0: पालिका वार्ड नम्बर 3 धादिङ अस्पतालको पछाडी प्रोप्राइटर बिरबहादुर श्रेष्ठ सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 43 57 437।
1: रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज।